आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: घर तू आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
0: अरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ले लीजिए
0: मेरे लिए।
1: जी आपकी नजर।

0: जानी।
1: ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए।
0: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
1: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: परसों बाद घूमने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ये घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: लेके रहूंगा, आया आया आया आया दिल का मैं खरीदा।
1: दोस्तों आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर अपने साथ अनिल कपूर जी को। तो आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सभी दोस्तों ने सभी एक से बढ़कर एक गाने भेजे हैं और प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए भाई, क्योंकि रोमियो नाम मेरा चोरी है काम मेरा।

0: नाम मेरा चोरी है काम मेरा रोमियो नाम मेरा चोरी है काम मेरा।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। आज के स्टार ऑफ द वीक अनिल कपूर जी के साथ मैं हूं आप सभी का रेडियो दोस्त अमन खान और मेरे पास बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। सभी का वेलकम करते हुए सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह मेरे सतपुर भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। वेलकम करते हैं अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अशोक देशमुख जी। और ये प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी वेलकम है प्रियंका जी। और सर्वेश भगत जी वेलकम करते हैं आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी। और निशांत राय बोले जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अर्पिता जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम करते हैं अर्पिता जी। साथ ही साथ जागीर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम। और संदीप सुतार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और गोविंदा खंडाते जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं गोविंदा खंडाते जी। विजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं विजय कुमार जी। और सर्वजीत सेठी जी आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ जुड़ने वाले दोस्तों में नाम है जितेंद्र सिंह जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक इंदपाल जी जुड़ चुके हैं, अशोक इंदपाल जी हैं जी, आपका भी मतलब वेलकम करते हैं। और काजल झका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी अवधेश कुमार जी। और सोनू गौतम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी सोनू गौतम जी। साथ ही साथ बाबूलाल अंजाना जी सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। सबसे पहले अनिल कपूर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी सुन लीजिए, फिर आते हैं आप सबके गाने को प्ले करने के लिए। फिलहाल ये जानकारी छोटी सी है और आते हैं इसके बाद।
2: नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बॉलीवुड के उस अभिनेता की जिसने अपने लंबे फिल्मी सफर में कई अलग अलग किरदारों को जिया। कभी रोमांटिक हीरो बने, कभी एक्शन स्टार, कभी कॉमेडी की तो कभी एक बेहद गंभीर किरदार से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता अनिल कपूर की। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका फिल्म इंडस्ट्री से पहले से ही गहरा रिश्ता था। उनके पिता सुरेंद्र कपूर फिल्म निर्माता थे और उनके परिवार का संबंध मशहूर कपूर फिल्म परिवार से भी था। अनिल कपूर का बचपन किसी बेहद आलीशान फिल्मी माहौल में नहीं बल्कि तिलक नगर की एक चौल में बीता। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था।
3: उस दौर में जब गणेश महोत्सव के दौरान फिल्में दिखाई जाती थी, अनिल कपूर बड़े ध्यान से उन्हें देखा करते थे। उन्हें राज कपूर बेहद पसंद थे। राज कपूर के अभिनय से वो इतने प्रभावित थे कि बचपन में उनकी नकल तक किया करते थे। शायद यहीं से उनके अंदर अभिनेता बनने का सपना पैदा हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि अनिल कपूर ने कैमरे का सामना बचपन में ही कर लिया था। उन्हें शशि कपूर के साथ एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। स्कूल के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगा और दूसरे साल में उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म संस्थान में प्रवेश लेने की कोशिश की, लेकिन लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाए।
4: लेकिन शायद अनिल कपूर के लिए मंजिल कुछ और ही थी। उन्होंने अभिनय सीखने के लिए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल का रुख किया और यहीं से उनके अभिनय के सफर को एक नई दिशा मिली। साल 1979 में फिल्म हमारे तुम्हारे से उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। शुरुआत एक कैरेक्टर रोल से हुई थी, लेकिन उन्हें इंतजार था उस मौके का जब वो मुख्य भूमिका में दर्शकों के सामने आएंगे, और वो मौका आया फिल्म वो सात दिन के साथ। इसके बाद अनिल कपूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 80 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फिल्में दी जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेताओं की कतार में खड़ा कर दिया। मशाल, मेरी जंग, कर्मा, मिस्टर इंडिया, तेजाब, रामलखन और ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। फिर आया मिस्टर इंडिया, एक ऐसा किरदार जिसे आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। अनिल कपूर का अरुण वर्मा और फिर वही किरदार बन जाता है मिस्टर इंडिया। फिल्म में श्रीदेवी के साथ उनकी जोड़ी और अमरीश पुरी का मोगैम्बो, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को यादगार बना दिया। और दोस्तों, अनिल कपूर की एक और खास पहचान बनी उनका अंदाज, झक्कास। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहा बल्कि अनिल कपूर की पहचान का हिस्सा बन गया। इसके बाद तेजाब आई जिसमें उनका मुन्ना वाला अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया।
3: रामलखन में लखन के किरदार ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। 90 के दशक में भी उनका सफर लगातार जारी रहा। लम्हे, बेटा, लाडला, विरासत, जुदाई और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय के अलग अलग रंग दिखाए। बेटा के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला।
4: और फिर साल 2000 में आई फिल्म पुकार। इस फिल्म में अनिल कपूर के अभिनय को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला और उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। लेकिन अनिल कपूर की कहानी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की तरफ भी कदम बढ़ाया। साल 2008 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उन्होंने काम किया। यह फिल्म पूरी दुनिया में चर्चित हुई और अनिल कपूर की पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई। फिल्म की पूरी कास्ट के साथ उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की बड़ी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में भी काम किया। इतना ही नहीं, अमेरिकी टेलीविजन सीरीज 24 में भी अनिल कपूर नजर आए और उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। लेकिन अनिल कपूर सिर्फ अभिनेता ही नहीं रहे, उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। गांधी माय फादर और बधाई हो बधाई जैसी फिल्मों के निर्माण से वे प्रोड्यूसर के रूप में भी जुड़े। और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अनिल कपूर ने संगीत की दुनिया में भी कदम रखा था। साल 1986 में उन्होंने सलमा आगा के साथ वेलकम नाम का एक पॉप एल्बम रिलीज किया था। इस एल्बम का संगीत बप्पी लाहिड़ी ने दिया था। अब अगर बात करें उनकी निजी जिंदगी की, अनिल कपूर ने 19 मई 1984 को सुनीता कपूर से शादी की। दोनों के 3 बच्चे हैं, सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर। सोनम कपूर ने अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई, रिया कपूर फिल्म निर्माण से जुड़ी और हर्षवर्धन कपूर ने भी अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। यानी जिस परिवार में अनिल कपूर ने अपने सपने को सच करने की शुरुआत की थी, उसी परिवार की अगली पीढ़ी भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। अनिल कपूर के करियर की सबसे खास बात शायद यही है कि उन्होंने खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। कभी मिस्टर इंडिया का मासूम अरुण, कभी राम लखन का लखन, कभी तेजाब का मुन्ना, कभी पुकार का गंभीर और जिम्मेदार किरदार, और फिर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में बिल्कुल अलग भूमिकाएं। 4 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कई पीढ़ियों के दर्शकों के सामने अभिनय किया है। और आज भी जब पर्दे पर अनिल कपूर नजर आते हैं तो उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका वही जाना पहचाना झक्कास वाला व्यक्तित्व तुरंत पहचान में आ जाता है। एक छोटे से चौल से शुरू हुआ एक लड़के का सपना, जिसने कभी राज कपूर को देखकर अभिनय करना सीखा, जिसने कॉलेज छोड़ा, जिसने एक्टिंग स्कूल का रास्ता चुना, जिसकी शुरुआती फिल्म रिलीज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने हार नहीं मानी, और वही लड़का आगे चलकर बॉलीवुड का अनिल कपूर बना। एक अभिनेता, एक निर्माता, एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और भारतीय सिनेमा की कई यादगार फिल्मों का हिस्सा। यही है अनिल कपूर की कहानी, एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने सिर्फ फिल्में नहीं की बल्कि अपनी कई भूमिकाओं के जरिए कई पीढ़ियों की यादों में अपनी एक अलग जगह बना ली।
1: जी दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी अनिल कपूर की कहानी के रूप में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के सबसे पहले गाने से, जिसे लेकर आए हुए हैं हमारे जाकिर खान जी। क्योंकि भाई अभी इंतजार की बात थी ना, तो इंतजार में तो ये गाना बनता है ना, है ना।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं और रंजीत कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। मनंदन जी माजी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है माजी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं पहले इनकी सुनते हैं।
1: जय मोहन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी। जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और अशोक देसी जी, हाँ ओके। और आत्मराम जी क्या कहते हैं
2: प्रोग्राम का आगाज बहुत ही सुपर सॉन्ग से और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई, शुक्रिया जानकारी वालों को। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: ओके वेलकम है आपका भी आत्माराम जी। जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है जितेंद्र जी आपका भी। और क्या नाम है, सत्येंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम ही मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। बाबूलाल जाना जी जुड़ चुके हैं, वेलकम। लिखते हैं हमारे जाकिर जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी है और अनिल कपूर की जानकारी भी अच्छी लगी है। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी विष्णु चंद्र जी। और निशांत अरोड़ा लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और चिंता बहन जी जुड़ चुके हैं और लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गाना अच्छा लग रहा है, इसी बात का जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ। और जयेश कुमार जी की पसंद है, सुनना चाहते हैं माई नेम इज लखन, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक आए हुए मेरे पास। सबसे पहले और देश कुमार जी देते हैं, अमन जी मेरा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके जी, और जितेंद्र जी देते हैं कि माय नेम इज लखन वाला गाना लाजवाब लगा है। और सरोज सागर जी क्या कहते हैं, इनकी तो सुन ही लेते हैं भाई।
1: जय अमन सर जी, अब देश कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए दोस्तों को। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि माई नेम इज लखन, गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जाकिर खान जी क्या कहते हैं, सुनते
2: थैंक यू सो मच सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। अनिल कपूर जी के सारे सॉन्ग एक से बढ़कर एक जो श्रोताओं ने भेजे सुनने को मिलेंगे, थैंक यू सर जी। मैं जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: वेलकम है आपका। और भेजते रहिए, जितने भी दोस्तों ने नहीं भेजा अभी तक भेज सकते हैं। और सोनू गौतम अध्यक्ष कुमार जी के पसंद लाजवाब माय नेम इज लखन गाना सच में बहुत अच्छा लगा है। और निशांत है वो लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और अशोक पाजी लिखते हैं वाह क्या एनर्जेटिक सॉन्ग है माय नेम इज लखन, सुनते हैं और तो ये मजा ही आ रहा है सुनने को। और शिल्पा बेंच लिखते हैं माय नेम इज लखन गाना बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और आत्माराम जी लिखते हैं कि मैं हूँ माय नेम इज लखन वाला गाना मुझे बहुत ही सुपरहिट लगा है। अगला जो डिमांड है मैं सुना रहा हूँ आपको, गोविंदा खंडादे जी का सुनना चाहते हैं, यूं घूर घूर के देखा ना करो। इंजॉय कीजिए इस गाने को, मैंने प्ले कर दिया है।

जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है मनसा जी, बहुत मस्त गाना प्ले हो रहा है। और अजय कुमार जी लिखते हैं कि ये सोनू गौतम जी को थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। और बाबू जी लिखते हैं गोविंदा खंडारी जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उनको धन्यवाद। गोविंदा जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मनसा जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, सुनते थोड़ा सा और।

0: वेलकम बैक टू रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना वाला था। और अगला जो रिमांड में प्ले करने वाला हूँ दो दोस्तों के रंजीत कुमार जी हैं और रंजीत
1: आरजे मसर जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज स्टार ऑफ द वीक प्रोग्राम शो में अजय गाने की डिमांड है। फिल्म का नाम है किशन कन्हैया और गाने का बोल है, आपको देख के देख देख के राज गया ये जान जान जान, सम्मा पे परवाने क्यों हो होते हैं कुर्बान, ओ मेरी जान ओ मेरी जान। ये गीत सबसे पहले आपको डेडिकेट है और आपकी सुंदरता की मूरत को डेडिकेट है और वंशिका जी को भी डेडिकेट है और जितने भी रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले साथी हैं सभी को डेडिकेट है। मैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, यही गीत सर जी सुना दीजिए।
0: ओके, और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं बाबूलाल अंजना जी, दोनों की डिमांड एक ही है तो सुना रहा हूँ आपको, देख एंजॉय कीजिए इस गाने को। जो भी दोस्त गाने की डिमांड करना चाहते हैं वो रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से अनिल कपूर पर गाने भेज सकते हैं।

0: मानो, मेरी जान हो, मेरी जाने मानो, मेरी डार्लिंग, मैं क्या बोलूं भाई। फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, सुनूंगा तुम देते हैं कि सभी की लेंगे ये भी बारी बारी वाला गाना, बहुत ही अच्छा लगा है। ओके, धन्यवाद देते हैं। और अमित तपड़िया जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं अमित तपड़िया जी। और
1: जय अम्मा सर जी, रंजीत कुमार जी और एक भाई और भी हैं, दोनों भाई मिली जुली फरमाइश में शामिल किए हैं। दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। वैसे यहाँ अशोक देशमुख जी लिखते हैं दोनों दोस्तों की पसंद सुपरहिट लाजवाब लगी है, दोनों को धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं हम दोनों दोस्तों की डिमांड को पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी। और रंजीत कुमार लिखते हैं सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और विष्णुचंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन सर जी और कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। अशोक कुमार जी यानी पटना वाले लिखते हैं के 1990 के पैदान नंबर 4 पे पाया था सर, अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज में अनवर सागर के बोलों को संगीत दिया है राजेश रोशन ने जी, बिल्कुल सही कहा। और थैंक यू सो मच जी, फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन सर जी
0: जी,
2: तेजा फिल्म का ये गाना सो गया।
0: अरे बाबा, आपको वहाँ भेजना होता है, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा, मैं जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगा। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आपको देखकर गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, अशोक पाल जी उत्तर प्रदेश से सुनना चाहते हैं तुमको देखा। किसको देखा भाई? तुमको देखा। एंजॉय कीजिए इस गाने को सभी के। ये डेडिकेटेड है लेकिन ओ माय गॉड, डाउनलोड क्यों नहीं हुआ है भाई? फिलहाल आते हैं।
3: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो है 9135841232 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: कीजिए अशोक पाल जी अपने गाने को।

0: वेलकम रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते। और एक साहब ने अभी अभी रिक्वेस्ट किया है, यानी पीना हराम है ना पिलाना हराम है, लेकिन उनका नाम क्या है भाई? जहाँ पे उनका नाम वहाँ लिखना है वहाँ पे गाने का नाम उन्होंने लिख दिया है, और जहाँ पे गाने का वो लिखना है वहाँ पे फिल्म का नाम उन्होंने लिख दिया है। भाई इसका ख्याल रखें, और वो आप अपना नाम जरूर मेंशन करते तब मैं आपके गाने को प्ले कर पाता। मैं विदाउट नाम कैसे करूँगा, जरा आप खुद सोचिए। ये फिर भी
1: आरजे अमन सर जी, अशोक पाल जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ शिल्पा बहन जी लिखते हैं, तुमको देखा तो ये वाला गाना मुझे बहुत सुपर हिट लगा है। जाकर जी लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए अशोक पाल जी को थैंक यू कहना चाहूंगा मैं, थैंक यू सो मच अशोक पाल जी। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि ओके, बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी की डिमांड मुझे बहुत प्यारी लगी है, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं, नाइस सॉन्ग चल रहा है, अशोक पाल जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा काजल झाकार जी का, सुना चाहती है, जरा आंखों में काजल लगा लो सुनम। तो सभी दोस्तों को डेडिकेटेड सुनवा दिया काजल झाकार जी, इंजॉय कीजिए।

और मुझे यानी बिंदिया से आ रहा है याद कि बिंदिया जी की डिमांड अभी तक आई क्यों नहीं। भाई बिंदिया जी कहाँ है, जल्दी से डिमांड भेजिए अपना, क्योंकि आपके जो गाने की डिमांड होती है बहुत ही प्यारी प्यारी होती है।

0: बिल्कुल ये तेरी बिंदिया है, सच में गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और ये रंदा जी रहते हैं कि काजल जी की पसंद मुझे झक्कास लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं इतने प्यारे गाने के लिए। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि सच में जरा आंखों में काजल लगा लो सनम, गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है जी। और निशांत है वो लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है। ओके, और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: अरजे अमन सर जी
0: बोलिए,
1: काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे पीकुरा जी लिखते हैं कि काजल जी का यानी काजल वाला गाना एक नंबर लगा है। हाँ जी, लाखन वाला काजल लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना चल रहा है सर जी, और सभी दोस्तों का गाना बहुत बढ़िया बढ़िया है, मजा आ रहा है सुन सुन के। विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाना प्ले हुआ है, उनको धन्यवाद देते हैं हम। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि काजल झकास जी के पास एकदम झकास लगी है, जरा आंखों में काजल लगा लो सनम, बहुत लाजवाब गाना है, मजा आ गया सुन के। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि वाह क्या प्यारा रोमांटिक गीत है, जरा आंखों में काजल लगा लो सनम, मजा आ गया है और बहुत खूबसूरत एहसास इस गाने का। आमना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम और वेलकम है, खुश आमदीद। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ अमित जी का है। अमित जी सुनना चाहते हैं बेटा का कोयल सी तेरी, बोलिए एंजॉय कीजिए गाने को।

0: दिल मेरा
1: बिल्कुल। अरे मुझे कुछ कुछ होने लगा है जी। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं जाकर जी, लेते हैं कि आंखों में प्यार और दिल, आंखों तो इन प्यार में दिल की जुबान होती है। अच्छा ओके ओके, आंखें तो इन प्यार में दिल की जुबान होती है और चाहत तो सदा बेजुबान होती है, और प्यार में दर्द मिले तो क्या घबराना, और सुना है दर्द से चाहत और जवान होती है। ओहो हो, ऐसा है क्या? ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन सर जी,
1: जी
2: सूरत गुजरात से हमारी काजल जक्का जी का सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन, शुक्रिया उनको, मैं आत्माराम पाटिल
1: जी। तो मैं बता दूं कि अभी आजकल वो रह रही हैं, यानी कि सीतामढ़ी बिहार में रह रही हैं। ओके, और पिकुरा जी लिखते हैं कि ये कोयल से तेरी बोली गाना मुझे मस्त लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अमित तपाई जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए, कुछ कह भी रहे हैं।
3: धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, और सभी को डेलीकेट है रेडियो हॉटस्टार के दीवाने दीवानियों को।
1: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे अशोक कुमार जी लेते हैं कि अमित जी की बेहतरीन पसंद, 1992 की पैदान नंबर दो पर बजने वाला इस गीत को उदित नयन और अनुराधा पडवाल के साथ साथ गाए थे, और समीर के शब्दों को आनंद मिलन जी के संगीत ने वो नायाब तोहफा दिया है, क्या बताऊं। वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि कोयल सी तेरी बोली गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और काजल झका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और विष्णु जी लिखते हैं कि कोयल सी तेरी बोली वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। निशांत है वो लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। ओके, और रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं रवि मोहड़े जी आपका भी। और अशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि कोयल सी तेरी बोली गाना मुझे अच्छा लगा है। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन खान जी इस खुदा की कायनात में आपकी मजी हुई आवाज, बेमिसाल लफाजी और दिलकश अदायगी आपके शो में ऐसा जादू भर देते हैं कि सुनने वाला हर शख्स शो का दीवाना हो जाता है। आपके बात करने का अंदाज इतना सहज और खूबसूरत होता है कि शो का हर लम्हा बेहद यादगार और दिल को छू लेने वाला बन जाता है। थैंक यू सो मच। अगला जो जो जो, जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि संदीप सुतार जी का है, सुनना चाहते हैं कुछ कुछ होता है। अरे कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है जी, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: सर के मेकों रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे फिर बैग आ चुके हैं। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अर्जय मां सर जी, संदीप सुतार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे इन पिकुर लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना लगा है मुझे, मजा आ गया क्योंकि एक नंबर गाना कुछ कुछ होता है। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है मनसा जी, क्या गाना लगा, थैंक यू सो मच। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन सर जी, यानी कि कायनात की खामोशी में भी इन कायनात का एक खूबसूरत साज बजता है, जो इसे महसूस कर ले है उसकी रूह सवर जाती है। और सितारों से सजी ये बेपनाह कायनात उस अजीम अजीम यानी कि कारीगर की वो नज्म है जिसे हर रोज देखना और महसूस करना ही जिंदगी। इसी बात पे चलिए हम यानी कि कायनात जी का गाना ही प्ले कर देते हैं। वो सुना चाहती हैं धक धक करने लगा, स्पेशली डेडिकेट उनके हार्ट बीट यानी एमडी ताहिर जी को डेडिकेट है। तो इंजॉय कीजिए इस गाने को, धक धक करने लगा, स्पेशली डेडिकेट ओनली एम ताहिर जी उनके हार्ट बीट को।

0: वेलकम बैक रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे, और यानी कि प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं आगरा वाले, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच। पिकुरा जी लिखते हैं कि धक धक करने लगा, सुपर हिट गाना है, आग लगा दी इस गाने ने, मजा आ गया सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये कायनात जी की डिमांड शानदार लगी है। और अच्छा चंदा सिंह जी लिखते हैं कि दिल से दिल मिल गया, वाह क्या गाना है, दिल खुश हो गया एकदम सुन के। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये कायनात जी की डिमांड एकदम लाजवाब लगी है, धक धक करने लगा। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है। और हमारे अशोक कुमार जी लिखते हैं कि 1992 के पैदान नंबर 18 पे बजा था सर ये, उदित नयन और अनुराधा पौडवाल की आवाज में समीर के शब्दों को संगीत दिया था आनंद मिलिंद जी ने, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फीडबैक से लेते हैं, क्या कहते हैं आप जी?
1: अमन सर जी,
0: जी
1: मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर।
0: पूछिए पूछिए।
1: हर रेडियो के लिए प्रति माह फरमाइश या गाने में हिस्सा लेने के लिए कुछ 50 रुपये माह के प्रति पैसे भरने पड़ते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 1 रुपया भी आपको नहीं भरना पड़ता है, ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ठीक है? यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं, आपको बस यानी फ्री में सुनिए, नो प्रॉब्लम, कोई पैसा नहीं देना है आपको, ओके। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि वाह क्या खूबसूरत गीत है, यानी मजा आ गया सुन के, धन धक धक करने लगा, मेरा जरा डरने लगा। निशांत है वो लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है। और एम ताहिर जी क्या कहते हैं, लिखते हैं कि कायनात जी इस नगमे की हर धड़कन में आपकी ही मौजूदगी है जो मेरे दिल की रफ्तार बढ़ा रही है। और जी बिल्कुल, अरे कुछ बोल कर भेज दीजिए फीडबैक, अच्छा लगेगा। वैसे अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं तो भूल ही गया भाई, मुझे किसका गाना प्ले करना था। फिलहाल मैं प्ले कर रहा हूँ रितु जी की डिमांड, इन पंडित जी ने हाथ यानी मेरा देखा था भोपाल में, इंजॉय कीजिए।

हमारे रेडियो पर भी थे पंडित अनिल कुलकर्णी घर जोड़े, मतलब घर तोड़े जी, पता ना कहाँ गायब हो गए। उनसे मैंने अपना हाथ दिखाया था, अभी तक बताया नहीं उन्होंने मेरे बारे में। आजकल तो बिल्कुल गायब हो गए वो।

0: ओके बिल्कुल हो जाएगी शादी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल फीडबैक सुनिए और क्या कहते हैं सर्वेश भगत जी।
1: अरजय अमन सर जी, रितु जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग की डिमांड है, मजा आ गया सुन के गाने को। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि रितु जी के पसंद मुझे बहुत अच्छा लगी, थैंक यू सो मच। और शिवराय लिखते हैं कि पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था, मस्त गाना लगा, मुझे मजा आ गया गाने को सुनकर। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि लोफर फिल्म का शानदार गीत, अनिल कपूर और जूही चावला पर फिल्माए हुआ गीत सुनने को मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, मजा आ रहा है गाना सुन सुन के। दिल को निशान साहब लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि लोफर का गाना शानदार सुनने में मिला, मजा आ गया। और ये फीडबैक क्या कहते हैं हमारे ताहिर जी।
2: अमन सर जी।
0: यस सर जी।
2: कायनात जी ने जो गाना मेरे को डेडिकेट किया है वो गाना काफी देर पहले थम गया है, लेकिन कायनात जी का वो गीत धड़कनों को उस रफ्तार से जोड़ गया है जो कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
0: अच्छा।
2: अब बतलाइए, मैं तो बेबस हो गया हूँ सर, क्या करूँ मैं, कुछ बतला तो दीजिए, आप तो लव गुरु हैं, कुछ आप ही एडवाइस दे दीजिए।
0: अच्छा, फिलहाल एक काम कीजिए, कोई अच्छे से गाने का डिमांड कर दीजिए उनके लिए। फिलहाल मैं अगला गाना प्ले करूँ आमना खान जी का, ये तो दहाल का मजाने आई हुई है देखकर। जय हो।

0: जय हो, जय हो, जय सच में गाना झुमा दिया यार, मजा आ गया। थैंक यू सो मच आमना खान जी, और आज बनती है सॉन्ग ऑफ द डे का विनर, बहुत बहुत बधाई हो। एक गाना और सुन सकती हैं आप, और नंदनी मालिक जी की अनिल कपूर स्पेशली में सभी गाने बहुत ही सुपर सुपर सुपर हिट हो रहे हैं, मजा आ रहा है सुन सुन के। और ये फिगर सुनते हैं
1: अर्जय मन सर जी, अमना खान जी अपने गाने में शामिल के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे यानी कि फिकुर राय जी लिखते हैं कि जय हो, मस्त गाना अमना खान जी के पसंद, लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार है, और सभी साथियों का प्यार भरा नमस्कार है। ओके जी, तो वेलकम करते हैं आपका भी। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि स्लैम डॉग मिलेनियम अवार्डेड गीत, ए आर रहमान जी का संगीत, लाजवाब गीत, सुनने में मजा आ गया है सच में, उसे कहते हैं वंस मोर, मतलब जिसको जितना बार भी सुनो तो दिल नहीं भरता है। और यहाँ पे क्या नाम है, सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि मस्त गाना है सर जी, क्या मजा आ गया सुन के इस गाने को। और रवि महर्जी लिखते हैं कि सुपर लाजवाब सॉन्ग के लिए, थैंक यू सो मच। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि जय हो, बेहतरीन गीत सुनने को मिला, मजा आ गया। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि आजा आजा जिन्ने सामने के तले, आजा गरीब वाले, मतलब क्या गाना है सच में, इस गाने की जितनी तारीफ करें कम है। लाजवाब गाने सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं आमना जी को, और फीडबैक सुनते हैं क्या कहती हैं।
2: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो,
0: बिल्कुल
2: जय हो जय हो।
0: क्या गाया आमना खान जी, सच में मजा आ गया। और लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। वैसे अगला जो यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार प्रोग्राम चल रहा है और सभी गाने बहुत लाजवाब चल रहे हैं, मजा आ रहा है। मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है मनीषा शर्मा जी। अगला डिमांड है वो हमारे इन विष्णु जी का है, सुनना चाहते हैं, सांसों से नहीं और कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, इंजॉय कीजिए इस गाने।

मैं ये कहूँगा यहाँ पे जो यानी कि हमारी नीना जी हैं, उनका दो रिक्वेस्ट है, लेकिन दोनों गाने वो यानी प्ले हो चुके हैं, तो प्लीज आप मुझे कोई और यानी कि दूसरा गाना भेज सकते हैं तो प्लीज भेज दीजिए।

0: बिल्कुल मोहब्बत से चलती है दुनिया, और वैसे मेरे पास बहुत सारे फिल्में गए हुए हैं, और त्रिपुरा लिख सकती सांसों से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया गाना मुझे अच्छा लगा है। और सत्यता जी लिखते हैं कि हमारे आपके बीच जो रिश्ता है वो मोहब्बत का ही तो है, मस्त गाना चल रहा है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जितेंद्र जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग चल रहा है, थैंक यू सो मच। और एम साहिर जी लिखते हैं कि ओके मैं कोशिश करता हूँ फिलहाल। और अशोक कुमार जी देखिए 1985 के पैदा नंबर 27 पर बजा था सर ये गाना, ये किशोर कुमार की आवाज में इन दीवार के बोल और बप्पे लहरी के संगीत, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और सीता सिन्हा जी लिखते हैं कि मोहब्बत से चलती है दुनिया गाना मजा आ गया सुन के। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि जय हो सम सर जी सुपर, मोहब्बत से चलती है दुनिया ये भी बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं दोनों गाने के लिए। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि मोहब्बत से चलती है दुनिया बहुत ही लाजवाब सॉन्ग चल रहा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ। ये मतलब इसमें तो बहुत दोस्तों की डिमांड है, और इसमें है हमारे किन किन दोस्तों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सर्वेश भगत जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, आत्माराम जी भी हैं, इनके अलावा भी बहुत से दोस्त हैं। तो पहले देखते हैं किनका किनका ऑडियो मेरे पास है, पहले इनका ऑडियो मैं प्ले करता हूँ फिर बताता हूँ। अशोक देशमुख जी का पहले ऑडियो सुनता हूँ मैं।
1: नमस्कार अमन सर। नमस्कार। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज अनिल कपूर पर फिल्माए गए गीत सुनना है, तो हमें गीत सुनना है, फिल्म का नाम है जुदाई, और गाने का बोल है मैं तुझसे ऐसे मिलूं कि जान बन जाऊं। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को,
0: थैंक यू सो मच,
1: और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके सर्वेश भगत जी।
2: अरजय अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है जुदाई, और गाने का बोल है तुमसे ऐसे मिलूं कि जान बन जाऊं। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत अंदाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, बरकिशोर भगत, आनंद शेखर, आंदर प्रकाश, मुनि कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, संतोष कुमार जी, मुन्ना जी, और आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे एम एस परमार जी, आरजे आदित्य जी, आरजे सोनी जी, आरजे रत्ना जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना जी, जयराम जी के अमन सर जी।
0: ओके आत्माराम जी।
3: हेलो आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग श्री संजय सप्रेन, नमस्कार जी। मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिया, तहसील मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉटस्टार पर स्टार ऑफ द वीक में मैं एक अपने अनिल कपूर जी पर एक गीत लेके आया हूँ सर। मूवी का नाम है जुदाई, और सिंगर है सर अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याज्ञिक जी, और गीत के बोल कुछ इस प्रकार के है सर। मैं तुझसे ऐसे मिलूं कि तेरी जान बन जाऊं, मैं तुझसे ऐसे मिलूं कि तेरी जान बन जाऊं।
0: जी जी जी।
3: तो सबसे पहले गीत मैं आपको आपकी सुंदरता की मूरत को अशोक देशमुख, सर्वेश भगत जी, सैयद यूनुस जी, दत्ता वेदम जी, और सभी हॉटस्टार वाले सुनने वाले सभी को बिल्कुल आज का गीत समर्पित है, सुना दो।
0: ओके सर जी। और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे ये विजय कुमार जी भी है, विजय कुमार जी के साथ साथ और भी दोस्तों का नाम है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तब तक आप गाने भी सुनते रहिए, मैं आपको नाम बताते रहूंगा। ओके मैं तुझसे ऐसे मिलूं, एंजॉय कीजिए इस गाने को फिलहाल। और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे वो शेर सिंह सैनी जी, आप भी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। और गजन जी लिखेंगे आदरणीय अशोक देशमुख जी, सुरेश भगत जी, आत्माराम जी और सभी दोस्तों ने गाने में हमें शामिल किया, डेडिकेट किया, सभी को थैंक यू सो मच। और यहाँ पे यानी कृष्ण पाई बहन जी लिखेंगे मैं तुझसे ऐसे मिलूँ, गाना लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। अशोक कुमार जी लिखेंगे किशोर देवी की आखिरी फिल्मों में से एक जुदाई का शानदार गीत सुनने में मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अर्जे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा तीन भाई का फरमाइश, हमारा अशोक देशमुख और आत्माराम पाटिल, इसके अलावा और भी भाई इसमें बहुत शामिल हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
0: जी आपका। और यहाँ पे आत्माराम जी क्या कहते हैं इनकी भी सुन लेते हैं।
2: प्यारे अमन सर जी, उच्च कोटि के अपने विचार और अपना रेडियो भी बहुत महान सर, और आपने हमारी फरमाइश बजाने के साथ साथ और कुछ दोस्त आए जैसे कि विजय भाई और सैनी जी, साथ में अशोक देशमुख है, सर्वेश भगत जी है, सभी के लिए ये गीत आपने बना दिया सर, शुक्रिया सभी को। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: ओके जी, और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक अभी बाकी हैं और यहाँ पे मैं शामिल करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं इन पिकुरा जी के कि मैं तुझसे ऐसे मिलूँ कि तेरी जान बन जाऊँ, गाना सुनकर मजा आ गया, धन्यवाद देता हूँ सभी दोस्तों को। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि जुदाई फिल्म का गाना शानदार लगा है, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद है। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर, आपने हमारे फरमाइश का गीत सुनवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निम्बोहरा महाराज से अशोक देशमुख जी। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि वह क्या बात है अर्जय अमन जी, सर्वेश भाई का गाना तो बहुत मस्त लगा है, धन्यवाद देते हैं, सच में रेडियो हॉटस्टार दीवाना बना देता है। और यूनिक के प्रियंका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मुझे गाना डेडिकेट करने के लिए। और प्रमोद जी लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और हमारे शेर सिंह सैनी जी और सभी दोस्तों को धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना डेडिकेट करने के लिए। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये पाँचों दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत अच्छी लगी है, सभी को धन्यवाद। और शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं अमन जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक पाल जी लिखते हैं कि वह क्या क्या प्यारा गीत है, मजा आ गया, बहुत खूबसूरत एहसास है इस गीत के साथ। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि ओके बिल्कुल। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए, वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो भी दो तीन दोस्तों का है, सबसे पहले तो उसमें शामिल हो रहे हैं हमारे सोनू गौतम जी, और सोनू गौतम जी के साथ साथ इसमें जितेंद्र सिंह जी भी हैं, जितेंद्र जी के साथ साथ और भी अब देखना पड़ेगा कौन कौन से दोस्त हैं। फिलहाल मैंने दो दोस्तों का नाम मेरे मतलब दिमाग में था तो इनका मैं नाम मैंने ले लिया है, और भी देखता हूँ अगर किसी दोस्त का नाम इसमें शामिल होगा तो मैं ज़रूर उनका नाम लूँगा। फिलहाल दोनों दोस्तों की डिमांड है कि मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, इन्जॉय कीजिए।

0: मुझे प्यार हुआ लम्या और गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं, शामिल करता हूँ सबसे पहले ये।
1: और जय मां सर जी, दो तीन भाई का फरमाइश है मैं शामिल किए, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और ये अशोक कुमार जी के जुदाई का एक और शानदार गीत सुनने में मिला, मजा

चंद्र जी की डिमांड मुझे शानदार लगी है, दोनों को थैंक यू सो मच। आत्माराम जी लिखते हैं कि मुझे प्यार हुआ अल्लाह मिला, ये लिखते हैं कि बहुत ही खूब छान गीत है, और सोनू गौतम जी और चंद्र जी दोनों को शुक्रिया इस गाने को डेडिकेट करने के लिए। और ओके, और फिलहाल यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि जितेंद्र जी सोनू गौतम जी के पसंद, हाँ मुझे प्यार वाला मियाँ गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, दोनों को धन्यवाद देता हूँ। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है दोनों दोस्तों की। साथ ही साथ अवधेश कुमार जी लिखते हैं कि भाई सोनू गौतम जी के पसंद मुझे लाजवाब लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि मुझे प्यार वाला मियाँ दोनों दोस्तों की डिमांड सुपरहिट लाजवाब लगी है, दोनों को धन्यवाद है। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी की पसंद का ये खुशवत ये नगमा, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ मोहब्बत के उस मासूम और हसीन एहसास को बयां करता है, जहाँ इंसान अपने प्यार का इकबाल और सीधे रब के सामने पूरी सच्चाई और शिद्दत से करता है। और सोनू जी की इस बेहतरीन फरमाइश के लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने इस शो में एक रूहानी और रसीला मिजाज घोल दिया है। आह कहाँ से लाते हैं। फिलहाल यहाँ पे सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि आह क्या बात है, मस्त सॉन्ग सुनने को मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि भाई सोनू गौतम जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं उनको। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि जुदाई का गाना सुनने में मिला, मजा आ गया है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ ये गाना भी बहुत अच्छा लगा, दोनों दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे भी पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और हरीश कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड है वो भी दो दोस्तों की है, एक हमारे निशांत राय भोले जी का है और दूसरा यानी कि विकास गडकरी जी का है, दोनों को सुनना है कि ये प्यार किया नहीं जाता हो जाता है जी। और वो साथ दिन में एक और गाना है, बहुत ही यानी प्यारा गाना है, यानी कंगना वाला गाना शायद कोई है।

0: बिल्कुल प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वैसे गाना बहुत सारे यहाँ पे एक से बढ़कर एक, सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा और फीडबैक भी आए हुए हैं, शामिल करता हूँ। पहले क्या कहते हैं
1: अर्जय अमन सर जी, दो भाई का फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि ये प्यार किया नहीं जाता हो जाता है गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देता हूँ। और ओके जी, और यहाँ पे यानी कि सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ हुआ है, ओह बहुत ही नाइस सॉन्ग है जी। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये प्यार किया नहीं जाता हो जाता है गाना लाजवाब है जी। और यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि दिल दिया नहीं जाता हो जाता है गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि वो 7 दिन का सुपरहिट गीत अनिल कपूर और पद्मिनी कुल्हाड़पुरी पर फिल्माया हुआ शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया, आनंद आ गया एकदम। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये प्यार किया नहीं जाता हो जाता है गाना मुझे बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद देते हैं। और सर्वजीत सेठी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है, थैंक यू सो मच। और सीता सिन्हा जी लिखते हैं कि वो 7 दिन का गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। और आत्माराम जी लिखते हैं अमन सर जी 27 सितंबर को मेरा जन्मदिन है, ओ तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में, आज तो है 25 और कल है 26 यानी कि सैटरडे और यानी कि संडे का दिन है, ओके तो आप मुझे उस दिन जरा याद दिलाएगा, मैं भूल जाता हूँ ना, आपका पोस्टर बनाऊंगा और यानी कि ग्रुप भी ओपन रहेगा और सेलिब्रेट भी हम लोग करेंगे। एक बार फिर से एडवांस में आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यानी कि विकास गडकरी जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं मनीषा जी आपका भी। और ओके और यहाँ पे गजन जी लिखते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ नीना जी का, और नीना जी सुनना चाहती हैं काटे नहीं कटते दिन ये रात हो, तो सुनाऊंगा इस गाने को और इंजॉय कीजिए नीना जी।

ओके, तो ये गाना बहुत ही प्यारा है और इसमें वो उन्होंने डेडिकेट भी किया है, स्पेशली डेडिकेट है यानी उनके जो हॉबी है यानी कि माय डियरेस्ट एंड यानी कि स्वीट वन एंड वन इन वनली लविंग एंड इन कैरी हॉबी एंड माय हार्ट बीट जनाब मीठी मीठी इन मुस्की वाले इन साहब जी के लिए है, आरजे आकांक्षा जी के लिए है और सभी दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और निशांत है बोले जिसने कि ये मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनसर जी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि काटे नहीं करते दिन ये रात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू, बहुत ही लाजवाब गाना है और धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रमोद जी लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच नीना जी। मनीषा जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग चल रहा है ओके। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि काटे नहीं करते दिन ये रात, ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना प्ले हो रहा है, धन्यवाद देते हैं इतना खूबसूरत गाना सुनवाने के लिए। जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है ये, काटे नहीं करते दिन ये रात, थैंक यू नीना जी। अशोक कुमार लिखते हैं कि मिस्टर इंडिया का सुपरहिट गीत सुनने को मिला, मजा आ गया है मोगैम्बो, खुश हुआ। अगला जो डिमांड है वो मिस्त्री बलबीर सिंह जी का है, वो सुनना चाहते हैं लैला बेचारी क्या करती नजरिया।

0: क्या है ये प्यार तो है बस प्यार, प्यार कोई सीमा ना माने ना कोई दीवार।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और यहाँ पे एम तहे जी लेते हैं कि नीना जी का गाना वो अपने यानी कि पसंद में अपने आप ही वो बेमिसाल है। ये गाना मतलब इन किसी और की भी दिल की गहराइयों को छूने वाला है। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जितेंद्र जी लेते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। हरीश कुमार गुप्ता जी लेते हैं कि जी हैप्पी बर्थडे सुजीत यानी गुप्ता जी को। अच्छा, उनका जिन जन्मदिन है उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और सत्येंद्र सिंह जी लेते हैं कि अच्छा ओके। और अशोक कुमार जी लेते हैं कि ये लाजवाब गीत सुनने को मिला, मजा आ गया, धन्यवाद। अगला जो डिमांड है एम ताहिर जी का है, स्पेशली डेडिकेट है उनके मैजिकल गर्ल यानी कैनाजी के लिए। एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। राहुल पासी जी देते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे सत्येंद्र सिंह जी देते हैं कि वाह क्या बात है सर जी, क्या सॉन्ग चल रहा है, सच में मजा आ रहा है। गजानंद जी लिखते हैं कि तेरी पत्नी कमर में है जादू, शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नंबर वन गाना प्ले हो रहा है। हरीश गुप्ता जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो सहिता सिन्हा जी का, ये सुनना चाहती है 1942 लव स्टोरी का बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग जिसका नाम है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

0: बिल्कुल एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ऐसा लगा ऐसा लगा बिल्कुल। वैसे फीडबैक बहुत सारे आ चुके मेरे पास और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि एमडी ताहिर जी के पसंद बिल्कुल लाजवाब, यानी तेरी पतली कमर में है जादू, हर चीज में जादू जादू है जी, थैंक यू सो मच। और सीता सिन्हा जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, ओके जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि वो तेरी तिरछी नजर में है जादू वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, उनको भी धन्यवाद। विष्णु जी लिखते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये वाला गाना मुझे बहुत मस्त लगा, ओके। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये सीता सिन्हा जी की डिमांड औसम लगा है। और गजानन जी लिखते हैं कि सीता सिन्हा जी के पसंद ये कुमार सानू की आवाज में 1942 लव स्टोरी का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। और विकास गडकरी जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया ये गाना चल रहा है, थैंक यू। और ये निकुंता बेनी जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी और सभी दोस्तों को भी गुड इवनिंग नमस्कार, मैं भी जुड़ गई हूँ, प्रोग्राम शानदार चल रहा है, थैंक यू सो मच आपका भी। और दत्ताक्रम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं कि हमने तो 33,000 का यानी कि करंट लगा था, ओह माय गॉड, तो आप जिंदा कैसे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अशोक कुमार लिखते हैं कि यानी कि पंचम यानी राहुल देव बर्मन जी का लाजवाब शाहकार का ये गाना 1942 लव स्टोरी सुनकर मजा आ गया। और यहाँ पे आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: स्टार ऑफ द वीक अनिल कपूर, ऑल द सॉन्ग इज वेरी नाइस, ऑल टोटल फ्रेंड्स, थैंक यू अमन सर जी, आत्माराम पटेल, निहार बुलढाणा,
0: ओके जी। वेलकम करते हैं, अगला जो डिमांड में प्ले करूंगा वो रवि मोहड़े जी का है, सुनना चाहते हैं रिम झिम रिम झिम, क्या गाना है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना में। सच में ये गाना इतना दिल को सुकून देता है, जब भी सुनो मतलब सुनकर मजा ही आ जाता है। वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं। हुकुम चंद जी से कहना, नमस्कार अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ और बहुत ही प्यारी प्यारी फरमाइशें चल रही है, मजा आ रहा है सुन के। सरवेज भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, रवि मुहारे जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। वैसे यहाँ पे दत्तक लेते हैं कि रवि मुहारे जी का गाना मुझे सुबह ही तक आया, उनको धन्यवाद। गजानन जी के दोस्त रवि मुहारे जी के पसंद रिम थिम रुम झुम रुम झुम गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद उनको इस गाने के लिए। और ये सुनते हैं, क्या कहते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी।
2: रिम झिम रुम झुम रुम झुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं।
3: बहुत ही शानदार गाना, बिल्कुल दिल को छू जाने वाला गाना, मजा आ गया। धन्यवाद दीपक गायकवाड़, सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए भी। और यहाँ पे इन प्रमोद कुमार लिखते हैं, रेस्पेक्टेड रवि मोहन जी के पसंद रिम झिम ऑसम चॉइस के लिए थैंक यू सो मच। और अशोक कुमार लिखते हैं कि रिम झिम एक शानदार गीत सुनने को मिला फिल्म 1942 लव स्टोरी का। आत्मा राम जी लिखते हैं कि अमन जी आपके प्रोग्राम में ये सबसे प्यारा गीत मुझे लगा है, धन्यवाद देते हैं इसको पसंद करने वाले दोस्त को। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं 1942 लव स्टोरी का, ये दोनों गाने सुपर एक्सीलेंट हैं। और हरीश कुमार गुप्ता जी लिखते हैं, अरे सर जी आज वो थीम पर नहीं है ना, अरे अनिल कपूर जी पर आपको फिल्माया हुआ गाना भेजना है। और प्रशांत अम्बुलकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि वाह सर जी क्या शानदार प्रोग्राम चल रहा है, सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। और उधर तो यानी कि गणपति विसर्जन भी हो रहा है, फिर भी अनिल कपूर मेरा फेवरेट एक्टर में से एक है और उनके सभी गाने मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये क्या कहते हैं इनकी सुन लेते हैं।
4: राहे धुआं धुआं जाएंगे हम कहां, आओ यहीं सो जाएं।
5: अमन सर जी बहुत बढ़िया गाना चलाया आपने, दिल से थैंक यू, पसंद करता को।
0: ओके जी, और अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों की है, एक हमारे शाहिद अंसारी जी हैं और शाहिद अंसारी जी के साथ साथ मनीषा शर्मा जी भी हैं, दोनों की एक ही डिमांड है और डिमांड सच में बहुत ही प्यारा है। और डिमांड का फिल्म इन बेटा से है, सजनी मतलब समझ रहे ना, मैं तेरा तू मेरी, और ये सॉरी ये वाला क्या था, ओ माय गॉड, सच में दोनों अलग अलग है, मुझसे गलती हो गई। यानी कि ये जो डिमांड है वह हमारे शाहिद अंसारी जी के है, इसके बाद प्ले होगा तब यानी मनीषा जी का। आई एम सॉरी मनीषा जी।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, और ये क्या कहते हैं,
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया आपका, मजा आ गया गाने में, और सभी दोस्तों का भी दिल से शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे फीडबैक देने के लिए। मैं रवि मोहाड़े, बैतूल मध्य प्रदेश।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे दाता जी लिखते हैं कि शाही जी का गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत लाजवाब डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाने के लिए। अजय भगत जी लिखते हैं कि नहीं जी, यानी कि 6 बजे से आजकल ये प्रोग्राम हो रहा है बिल्कुल। आत्मानंद जी लिखते हैं कि भाईजान शाहिद अंसारी जी के पसंद, और उनके बाद यानी कि मनीषा जी के पसंद, दोनों शानदार लगे, धन्यवाद देते हैं दोनों को। और कुंता जी लिखते हैं कि भाई रवि महाराज जी, शाहिद अंसारी जी और मनीषा शर्मा जी, सभी की पसंद, लाजवाब, थैंक यू सो मच सभी को। हरीश कुमार गुप्ता लिखते हैं कि वाह बहुत बहुत ही प्यारे प्यारे गाने सभी दोस्तों को। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सभी गाने लाजवाब, धन्यवाद सभी को। और हमारे गजानंद जी लिखते हैं कि मनीषा शर्मा जी, शाहिद अंसारी जी, सभी की पसंद, शानदार शानदार शानदार। मनीषा जी लिखते हैं कि बहुत बहुत बहुत थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, और शाहिद जी का भी गाना, और सभी दोस्तों का भी धन्यवाद देने चाहूंगी फीडबैक देने के लिए। ये फीडबैक
2: जय अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी और मनीषा शर्मा जी, दोनों आदमी अपने अपने गाने में शामिल किए, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, और मनीषा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे इनशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तारे हैं बराती सुपर एक्सीलेंट सॉन्ग के लिए धन्यवाद मैं देना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। और विष्णु जी लिखते हैं कि जीवन साथी हम गाना मुझे अच्छा लगा। और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों की फरमाइश बहुत ही लाजवाब। मैं सुशील कुमार
0: जी,
1: मेरी भी एक
0: हाँ वो आपको भेजना होगा सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। प्लीज सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। और गजानन जी

0: कि ये तारे हैं बाराती वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। अजय भगत जी लिखते हैं सुपर हिट डिमांड है ये जी, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये फिर
1: अमन सर जी नमस्ते, कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहे रेडियो होस्ट जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करवाऊंगा, यानी कि प्रियंका जी का, और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं रब ने बनाया तुझे मेरे लिए।

का दिल का मैं ईमान बना के क्या गाना है। और हुकुम जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। गजन जी लिखते हैं ये प्रियंका जी की डिमांड, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, गाना सच में लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं। और ये निक शैलेंद्र बुलनेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि मेलोडियो संग चल रहा है। और संजय पाटिल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। संजय पाटिल जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत है क्या। और यहाँ पे शिखर बेन जी लिखते हैं, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, गाना मुझे बहुत लाजवाब लगा है। और कुंता बेन लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच आपका प्रियंका जी, और मजा आ गया गाना सुनकर। अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि मनीषा जी का, और वो ये सुनना चाहती है ये वाला गाना, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे अजय भगत जी से बहुत ही नाइस और झक्कास गाना है, एकदम मजा आ गया सुन के। प्रमोद कुमार जी से वाओ क्या डिमांड है, सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और गजानंद जी से तेरा साथ है कितना प्यारा गाना, सच में सुनकर दिल खुश हो गया है। और प्रियंका जी से की हमारा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तेरा साथ है कितना प्यारा गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब सॉन्ग मनीषा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ सर्वजीत सेठी जी का, ये सुनना चाहते हैं कि मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि वो तेरा साथ है कितना प्यारा गाना, मुझे अच्छा लगा है। और मनीष क्या नाम है, ये मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि बहुत अच्छा गाना सुनने को मिल रहा है। और यानी मनीषा जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो हमारे वो यानी संजय पाटिल जी का है, वो सुनना चाहते हैं, जाओ तुम चाहे जहाँ एंजॉय कीजिए। भाई यानी संजय पाटिल जी एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक है और यानी कुंता जी लेते कि मिले जुली डिमांड बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। और विष्णु जी लेते हैं कि जाओ तुम चाहे जहां, गाना मुझे अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और संजय पाटिल जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना को प्ले किया, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है हमारे अजय भगत जी का है, वो सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा गाना और गाने का बोल तो भाई सच में बहुत ही प्यारा है, तो सुनवा दूं अजय भगत जी का गाना, और वो गाना है जीना नहीं मुझे है मरना।

0: है मरना।
1: वेलकम बैक और रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे, बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और सरवजीत शेट्टी जी क्या कहते हैं जरा सुनते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने हमारा गीत चलाया और जिन्होंने हमारे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है, रब ने

0: दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए।
1: तो सुनते रेडियो होश चार जो सबको दीवाना बना दे, मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
2: ओके जी, और यहाँ पे मीना कुमारी जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं और लिखते हैं कि ये तेजाब का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, कह दो कि तुम मेरी हो वरना। और संजय पाटिल जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गीत, ये मेरी पसंद का भी गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन सर जी दिल से धन्यवाद मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए। और अशोक पाल जी लिखते हैं अमन सर जी आज तो स्टार हैं अनिल कपूर, वो जाओ तुम चाहे जहाँ, मतलब ये गाना सच में अनिल कपूर जी का नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा हो सकता है, शायद मैं मुझसे यानी गलती हो गई होगी, तो आप लोग गलती गाना मत भेजा कीजिए, मैं इतना ये नहीं चेक नहीं कर पाता हूँ यार। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम डिमांड है, थैंक यू सो मच। और यानी कि कुंता जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और प्रशांत अम्बुलका जी लिखते हैं कि वाह क्या लाजवाब गाना है। और ये फिर
3: कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझे

0: तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए, दिल से शुक्रिया।
1: वेलकम जी, और प्लीज आप लोग इन गलत गाना बिल्कुल ना इन्हें भेजा करें, क्योंकि मुझे इस समय ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ मुझे गाने प्ले करने पर ध्यान रहता है। अगला जो डिमांड है वो इन्हें कुंता बेनी जी का है, और सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए इन्हें कुंता बेनी जी। और नेक्स्ट गाना जो प्ले होगा हमारे इन्हें प्रमोद जी का प्ले होगा।

तो बिल्कुल इन्हें कह दो जमाने से ये सब और प्रमोद जी लिखते हैं कि ये रिस्पेक्टर ने कुंदा बेन जी की पसंद सुपर लगी है, गाने में शामिल करने के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और संजय पाटिल जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट गीत चल रहा है, मजा आ रहा है, उनको धन्यवाद देते हैं। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये कुंता बेन जी की पसंद एकदम लाजवाब लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और बहुत से लोग काम कर रहे हैं, एक से लोग हाँ। हल्का जनम जी लिखते हैं कि ये कह दो जमाने से और शबीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में लाजवाब गाना सुनाने के लिए थैंक यू सो मच कुंता बेनी जी। अगला जो डिमांड मैंने कहा था यानी प्रमोद कुमार जी का है, तो भाई प्रमोद कुमार जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना में। सच में गाना ये भी बहुत ही प्यारा था, मजा आ गया ना सुनकर। और कुंदा जी लेते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले किया। दोस्तों का भी शुक्रिया, धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और विष्णु जी लेते हैं कि अमन जी बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, सच में मजा आ रहा है आज के सभी प्रोग्राम को सुन सुनकर। और प्रमोद लेते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरी फरमाइश को प्ले किया, धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों का भी धन्यवाद। और संजय पाटिल जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीतों का, ये क्या ही बताऊं, यानी बहुत ही बहुत सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त प्रमोद जी के पसंद बेहतरीन लाजवाब, धन्यवाद देते हैं उनको इतना करे गाने के लिए। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये गीतों से सरगम वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और अजय भगत जी लिखते हैं कि सॉन्ग तो ये भी बहुत खूब है। जी जी बिल्कुल, इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे हुकुम चंद जांगिड़ जी का है। सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना, सुनिए आप भी, एंजॉय कीजिए इस गाने को, क्योंकि गाना सच में बहुत खूबसूरत है, दिल को छूने वाला।

about this.

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि अमन सर जी सुपरहिट सॉन्ग चल रहा है, मजा आ गया सुन के, मैं भी जुड़ गया हूँ। और वेलकम है आपका। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड के लिए थैंक यू सो मच भाई। प्रमोद जी आपका थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जांगड़ जी के पसंद ये पहले छुनमुन छुनमुन वाला गाना भी सन में सच में दिल में घंटी बजा रहा है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये पहले छुनमुन छुनमुन वाला गाना बहुत लाजवाब है, बहुत बहुत बहुत मुझे ये पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि पहले छुनमुन छुनमुन वाला गाना सच में मन को मोह लिया है, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और मनीषा जी लिखते हैं कि ये विरासत का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, थैंक यू सो मच। वैसे अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ दत्ता कदम जी का प्ले करने वाला हूँ, सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए दत्ता कदम जी।

शुगर का मैं कौन रेडी हॉट शो जो आपको दीवाना बनाते हैं। और शिल्पा पेंजी लिखते हैं जानम वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त दत्ता जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। अजय भगत जी लिखते हैं ये भी गाना मुझे बहुत ही पसंद है, माइंड ब्लोइंग है। और अगला जो डिमांड में प्ले करना वाला आमना खान जी का, जो आज के यानी विनर बनी हुई हैं, पहले इनके गाने को मैं प्ले करके आता हूँ तो फिर मैं नंदलाल जी के गाने को मैं प्ले करूंगा। और इन्होंने मेरे पसंद के गाने को भेज दिया है, थैंक यू सो मच। तो मैं ये तो गाना

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-1232 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: ओके, आमना खान जी,
0: आपने ट्यून किया है रेडियो।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यानी कुंता जी लेते हैं आमना खान जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारे लगे, दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। गजानंद जी लेते हैं कंगना ओए होए कंगना, शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज में बेहतरीन लाजवाब गाना, मजा आ गया है। अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल जी का है, तो सुनवाता हूँ भाई, एंजॉय कीजिए इस गाने को। नंदलाल जी

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना वाला राजेश वैजल लिखते हैं वो इनकी कंगना, वो कंगना वाला सुपर सॉन्ग सुनने ला सुनने को गजल अंजलि लिखते हैं कि नंद लाल जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको। और यानी प्रशांत अम्बुलकर जी लिखते हैं कि ये कुछ हो गया, बहुत बढ़िया गाना मिल गया सुनने को। और अगला जो डिमांड दीपक कुमार गायकवाड़ जी का।
1: अमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार अभिनंदन। रेडियो हॉटस्टार पर अनिल कपूर की फिल्मों के गाने आज हमें भेजना है, तो मैंने भी एक गाना भेज दिया है। फिल्म का नाम है लोफर और गीत के बोले आओ चले हम करें नैन मटक्का, ये गाना है। और नई गाने सुनकर आपने डांस किया तो पूरा पैसा वापिस वापिस वापिस। तो सुना दीजिए मेरी पसंद का गाना जो कि सबकी पसंद का होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है रेडियो हॉटस्टार के गाने सुनकर। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़।

प्यार पक्का हो गया है। वैसे फिर व्यक्ति आगे नंदलाल जी लिखते हैं, अमन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और आमना खान जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम तो एकदम रेड बुल हुआ है। अच्छा जी, सच में कहा। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को नमस्कार है, आज का प्रोग्राम नंबर वन झकास हुआ है, थैंक यू सो मच। और सीता पे लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना चल रहा है, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे संजय पाटिल लिखते हैं कि लाजवाब गीत चल रहे हैं, सभी का थैंक यू सो मच। अशोक पाल जी लिखते हैं कि अमन शाह जी ये 10 बजने वाला है। हाँ बिल्कुल सही, मुझे याद दिलाया आपने यार, थैंक यू सो मच। अब क्या मुझे जाना पड़ेगा ना, अब देखता हूँ।

पर डिमांड। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो मैं किनका कर देता हूँ जल्दी से, यानी अभी अगला जो गाना है वो यानी कि प्रशांत अम्बुलकर जी का मैं करता हूँ। वो लिखते हैं लड़की है क्या रे बाबा। ओके, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास बहुत सारे, पहला तो ये ही सुनेंगे
1: हम। अमन जी, सभी सुनने वालों को मजा आया कि नहीं आया ना? मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से, मेरी फरमाइश पूरी करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यानी कि प्रशांत अंबुलका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यानी यहाँ पे संजय पाटिल जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है अनिल कपूर जी, इनका जो गाना सचमुच है बहुत ही प्यारा है। और अशोक कुमार लिखते हैं कि ये गाना फिल्म के दोनों हीरोइन यानी मतलब दीपिका और अभिनय टंडन पर फिल्माया। ओके अच्छा है, ओके ओके ओके। और लाडला का भी गाना अच्छा लगा, ओके धन्यवाद देते हैं। अगला जो जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय।

0: की बहुत से दर्द की डिमांड छूटने वाली है। चलिए यानी के गजानन जी का ग्रुप का डिमांड मैं प्ले करता हूँ, एंजॉय कीजिए।
1: ओ रमता जोगी होए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अम्मा जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे गुप्ता जी लिखते हैं कि अनन्या का जन्म सरकार जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। और प्रशांत अमरकर जी लिखते हैं कि बहुत ही दिनों बाद आज मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ और बात प्रोग्राम का सुनकर तो मजा आ गया है। राजीव त्वर जी लिखते हैं कि मेरी जिंदगी में आया हो ये, यानी कि शिल्पा बहन जी की पसंद बहुत अच्छी लगी। अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूँ और ये पसंद है हमारे यानी कि प्रकाश कुमार जी का, और सुनना चाहते हैं राधा बिना है किशन अकेला। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

यहाँ पे प्रसाद जी लिखते हैं भाई, यानी कि प्रकाश जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और वैसे आज के गाने सभी हम क्या ही बताएं, हम छोड़ कर जाना पड़ेगा। वैसे अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मंगेश जसमुख जी का है। वो सुनना चाहते हैं जिंदगी।

यानी कि कुंता जी के वाह बहुत ही बढ़िया डिमांड है, थैंक यू सो मच गाने के लिए भी। और अशोक कुमार जी के मिस्टर इंडिया की जिंदगी की हकीकत पर फिल्म असरदार गीत है। और गजानंद जी लिखते मंगेशकर स्कूल जी के पसंद मुझे बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद देते उनको। और राजीव तिवारी सीखते हैं कि सभी गाने बहुत ही सुपर हिट है, राधा भी नहीं किसी ने अकेला भी अच्छा लगा है। और ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ दो दोस्तों की है, राहुल पासी जी और अर्पिता जी दोनों की एक ही डिमांड है, जुदाई जुदाई कभी आए ना जुदाई। तो आप दोनों की पसंद पे मैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक। और यहाँ पे अशोक कुमार जी लिखते हैं कि ये जुदाई का टाइटल सॉन्ग सुनकर मजा आ गया, आनंद आ गया, धन्यवाद देते हैं। और देखा लिखते हैं राहुल पासी जी अर्पिता जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद। और कुंता जी लिखते हैं कि राहुल पासी जी अर्पिता जी के पसंद मिले जो डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और हमारी नंदनी मालिक जी की बहुत ही प्यारी पसंद है, ओके। और अगला जो डिमांड है वो महेश जी का है, महेश जी सुनना चाहते हैं माई नेम इज लक्ष्मी।

माय गॉड, ये तो सबसे पहले गाना प्ले हो चुका है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। और यहाँ पे यानी कि लिखते हैं आमना खान जी की, आपकी मम्मी का कॉल आया था ना, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मेरी अम्मी सबसे मतलब क्या बोले, मतलब मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, वो तो मुझे आज तक यानी कि मारी भी नहीं है, मतलब यानी कि छोटे से लेकर अब तक मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। और मैं ये कहूँगा कि दुनिया की सभी माँ बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत प्यारी होती हैं, जैसे कि मेरी नंदनी माँ भी है, और भी जितनी भी माँ होती हैं दुनिया की सभी माँ सबसे अच्छी सबसे खूबसूरत होती हैं, उन जैसा कोई नहीं होता है। इसी बात पर उन यानी सभी यानी माँ के लिए एक गाना मेरी तरफ से, एंजॉय कीजिए सभी दोस्त।

और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। अपना और अपने का ख्याल रखें और सुनते रहें रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।

0: करे शोर।
1: अरे
0: अरे
1: बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो
1: ए टोनी फर्नांडिस

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

चूल्हा जला दो जी, अजी घास में डाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.